कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे हार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे अपरपूर मथे टिका तेड़ तोती खखाई हाथ छुरी जगत का साई नील बस्त्र पैरो प्रवान मलेस तां ले पूजे प्राण पाखिया का कुठा बकरा खाना।

0: गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: बोल जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही। दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरती अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद न सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर है घर नाव निधि आवै ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी

बोल धर्म का जयकार, बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। सिखां दा मान नीवा, मति उच्ची, मत पत दा रखाप, वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जीओ, श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान, खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणे आंदमाणे।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर भरन जात अर पात नहिं जेहे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत के अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साह सहाण गणिजै त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत तो सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जग और न जाहे महातम मैं अवतार जागर यान किया तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पिया एह पद्धति मत चूकह रे मन।

सफल मूरत दर्शन बलहारी चरण कमल मन प्राण अधारी रहा साध संग जन्म मरण निवारी अमृत कथा सुन करन अधारी काम क्रोध लोभ मोह तजारी दृढ़ नाम दान स्नान सुचारी कहो नानक एह तत् बिचारी राम नाम जप पार उतारी कहो नानक यह तत् बिचारी राम नाम जप पार उतारी वा

सब किछ तेरे वस, तेरा घर भला, तेरा घर आनंद वडाई तुद कर मान, मत्ता तेज अपना आप जर सर्ब।

मुखी उजले केती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

0: सब किस जान ला, सब किस तेरे वस, तेरा कर भला, तेरे कर आनंद वधाई तुद कर, मान महत्ता तेज अपना आप जर, सर्ब कला भरपूर दिसे जत कता, नानक दासन दास तुद अगे बिन बता सलो।
1: पवन गुरु पाणी पिता माता, तरत महत दिवस रात, दोयदाई दाया खिले सगल जगत, चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हदूर, करमी

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी के फतेह पातशाही दसवें कव्योवाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दा रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबा तमकाव हो आप हाथ द मोह बचाव हो सुखी बसा मोरो परिवार सेवक सिख सब करतार मोर अच्छा निज कर द करी आय सबरन कवा संघरी आय पूर्ण होई हमारी आस तोर भजन की रह प्यास तुम्हें साड कोई अवर ना त्याऊं जो वर चाह सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ मुझे भरी है मरण काल का त्रासन भरी है जो सदा हमारे पक्ष श्री अस्त जो करी हो रक्षा राख लिहो मुह राखण हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंत तुमहपुरी चतुर्दशकंत काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव की वेदराज ब्रह्मा जूथी जमन काल सब लोग स्वारा नमस्कार है ताहे हमारा जमन काल सब जगत मनाया देव दैन जछन उपजाय आदि अंत का अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेवगुण सुख दियो सतरन को पलम बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंजरे स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना घट घट के पट पट के जाना जब उद कर करा करतारा प्रजा तरतव दी अपारा जाव्या कर करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते वदन श्रेष्ठ सब तार आप अपनी बूझो चार तुम सब ही तेरा तनरालम जानत भेद भेद अरयालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आदि अनिल अनाद संभ ताका मूड़ चारत भेदा जाको भेव न बावत बेदा ताको कृपाहन मानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह देती तुमरा लखन जाय पसारा कहे बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहीं पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम पव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संघरो दोष जीते उठ बत पाता सकल मलीस करो नन काता जे अस्तु तब सरनी परी तन के दुष्ट दोखे तो हवा मरी
पुरख जवन भग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब टारे। जो काल का एक बार ते है, ताके काल निकट न है। रक्षा हुए ताहिं सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल। कृपा दृष्ट तन जाहि निहार हो, ताके ताप तनक मोह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शास न कोई। एक बार जिंद में संभारा, काल फांसते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कह, दारद दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग के तुम शरण तिहारी, आप हाथ दाल हो उबारी। सर्ब ठार मोह हो सहाय, दुष्ट दुख ते लहो बचाई। खड़ग के तुम

हाय दुष्ट दुख तिल हो बचाई। स्वैया ताए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम प्राण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ। सिमरत शास्त्र वेद सब बह भेद कह अमेक न जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे बखाने ओ। दोहरा सगल द्वार कौ साढ़ कहो तुहारो द्वार माहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार कौ साढ़

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शॉड बिख बिख खाई, माया मो परम पै फूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई, इक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखह शरणाई, इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखह शरणाई, सुकह टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाय, दर्शन परसिया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटी, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरसादशाह, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहो, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरसादशाह, जिस पास बैठिया

ठुक लो या नाम की बेला पै पै सोया अवसर अपना बुझ नाम याना रंग लपटाना रहा लोभ लहर का बिगस फूल बैठा साध जना का दर्शन डीठा कबहू न समझै अज्ञान गवारा बहर बहर लपट्यो जंजारा रहा बिखनाद कर्ण सुन पीना हर जस सुनत आलस मन कीना दृष्ट नाही रे एखत अंदे छोड़ जाहे झूठे सब तंदे रहा कहो नानक प्रभ बख्श करी जय कर कृपा मोहे साध संग दीजै तो किश पाइए जो होइए रीना जिसे बुझाए तिस नाम लेना रहा तो किश पाइए जो होइए रीना जिसे बुझाए तिस नाम

मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर है जल विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद सा लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद पुख विस्माद पोक विस्माद शिफ्त विस्माद सलाह।

0: पैवे सूरज पैवे चंद कोह करोड़ी चलत न अंत, पैवे सिद्ध भुसुरनाथ पैवे चढ़ाने आकाश, पैवे जोत महाबल सूर पैवे चावे जावे पूर, सगले आप लिखिया सिरलेख नानक निरपहो निरंकार सचेक महला पहला।
1: नानक निरपहो निरंकार हुरके तेरा मरवाल कितिया कन कहानियां।

सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ कर है विचार बंदे से जेब विच बंदी वेखन को दीदार हिंदू साला ही साला हां दर्शन रूपे अपार तीर्थ ना व्यर्चा पूजा अग्रवास बेकार जोगी सुनते आवन जिते लख नाम करतार सुख

0: रंग ना सोए पैर विच कुम चढ़ाइए सन पावतन होए नानक भगती जिर पै कूड़े सोए ना कोई महला पहला
1: लब पाप दुए राजा महका कूड़ हुआ सिकदार काम नेप सद पुछिए बह बह।

पवित्र कर्म जना को तुद पाया तातनी कसम ते आया एना जनता के बस किछ नाही तुद बे कि जग पाया एक नानू तू मेले का पुतुद खोआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप जाया सहज ही सच माया सहज ही सच माया।

बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लख्या रहा हो। जात में जो जोत में जाता अकल कला भरपूर रहया।

अकथ कथा ज्ञान पंच भूत वस कीने जमत ना तरास गुर अमर गुरु श्री सत कलयुग राखी पत अगन देखत गत चरण कवल जास सब

0: much.
1: Cholana Guru Gaur, Guru Gaur, Guru Jap Praniyo, Shabda Har Har Jape, Naam Navnit Ape, Rasan Ainasarase, Sat Kar Janiyo, Phun Prem Rang Paye, Guru Mukhay Tyaye, An Marg Tajo, Pajo Har Gyaniyo, Bachan Gaur Rid Taro, Panch Bhoo Bas Karo, जन्म कुल उद्धरो द्वार हर मानियो जो तो सब सुख एत उत तुम वंशवो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो
2: गुरु गुर गुरु जप सतकार आगम गुण जान निधान हर मन धरो ध्यान ऐनिस करो बचन गुर हृदय धर हुन गुरु जल बिमल था मजन करो संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निरभउ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुग्ध मन भ्रम तजो नाम गुरमुख भजो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाई उदत गुर गैर गंभीर बेअंत हर नाम न गहीर मन मिलत लिव लाई हुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याई अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाई नाम निर्वाण निधान हर उर धरो गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइए
3: गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन दे जाकी सेव शिव सिद्ध साधिक सुर असुर गन तरे ते तिस गुरु बचन सुन कन दे फुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर करे तरयो प्रहलाद गुर मिलत मुन जन दे तरै नरदाद सनकाद हर गुरमुख तरै एक नाम रग तजो

0: आठ कीरत की गोरे रामदास राखू सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखू सरनाई।
1: सुख टल गोर सेविया अहनिस सहज सोभाए दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख जाय हो सिफ तख संबंधी नूर और सह कुर सह चटिया तुद डिठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सजन सचा पातशाह सिर शांद शाह जिस पास बैठिया सोहिए सबना दा वेसा सजन सचा पातशाह सिर शांद शाह जिस पास बैठिया सोहिए सबना दा वेसा। सतना

लब लोभ पर जालिया नाम मिले आधार सतगुर भिखिया देह मैं तो समर्थ दातार हमें गर्भ निवारिया काम क्रोध अहंकार लब लोभ पर जालिया नाम मिले आधार।

जग मह वरत आप हर सिते प्रीत कर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। श्लोक महला पहला। सतगुर भिखिया देह मैं तू समर्थ दातार हौ मैं गर्भ निवारिया काम क्रोध अहंकार लब लोभ पर जालिया नाम मिले आधार राग सूही की वार। पौड़ी पंद्रवी श्लोक नाल

0: उड़ गए रखवाहू महला पहला।
1: शाम कहे से तंबर स्वामी सच में आशय साचर है सबको सच समावे ऋग कहे।

0: दया कृपा संतोख सूजत गंडी सतवट ए जनेऊ जी का हिता पांडे कत नायो टुटे ना मल लगे ना हो जले ना जाए तन सुमान स्नान का जोगल चले पाए चौकड़ मुलड़ाया बै चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्रह्मतिया ओह मुआ ओह चढ़ पाया वे तगा गया महला पहला
1: लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात दिन सजी नाल तग कपाहूं कतियां।